Gee, not bad, hai na? It is. I like the whole thing. And Zoa Wasim is a pretty girl, so dekhne mein bhi acha hai. Agar aapne video nahi dekhi hai abhi tak to. Iske ilawa, main soch rahi thi, hua kuch yun ke story Pakistan ke baare mein. First of all, welcome back. पाकिस्तान के बारे में स्टोरी. मैं जब वहाँ पर थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ, हम लोग रोड ट्रिप कर रहे थे पेशावर के और जा रहे थे, और हम लोग हमेशा पेशावर जाते हैं बिकॉज फैमिली वहाँ पर है एंड ऑल दैट. तो हम लोग रास्ते में थे और हर एक को, पूरी फैमिली जा रही थी, तो बच्चे बड़े एवरीबडी, ठीक है. तो मतलब पहले बारी बारी सबको चांस मिल रहा था कि वो अपना ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं गाड़ी के साथ और अपने गाने लगा सकते हैं. आई बींग द प्रोफेशनल supposedly, at least the stats says that, like say the stats say that, कि मैं professional हूँ because मैं 10 सालों से radio कर रही हूँ. जब मैंने वहाँ पर अपनी playlist लगाना शुरू की तो मुझे एक चीज़ realize हुई, और उसके लिए मैं आप लोगों से बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहती थी. मैं जब अपनी प्लेलिस्ट खुद सुन रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितने ज़्यादा पंजाबी गाने लगाती हूँ. मैं इतने ज़्यादा पंजाबी गाने लगाती हूँ कि मैं खुद बेचारी मैं शर्मिंदा हूँ सीरियसली, बिकॉज मैंने सारे टाइम में एक के बाद एक एंड इट्स लाइक नॉट द समथिंग के जो इस तरह से, मतलब मैं बस ऐसे कोई सी भी गाने लगा रही थी. मैं चुन चुन के अच्छे गाने लगा रही थी भाई, अच्छे गाने, और वो अच्छे गानों में सारे गाने उस तरह के थे जो पंजाबी हैं, एंड जो गाने मुझे लगता है कि पंजाबी नहीं है वो भी पंजाबी गाने हैं. मतलब मुझे हुआ यार मैं क्या कर रही हूँ. तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं पंजाबी गाने जो हैं वो ना चलाऊँ और कुछ नए सिंगर्स के गाने चलाऊँ, बिकॉज मुझे वही ये सुनते हुए ही रियलाइज़ हुआ कि मेरे गाने जो हैं वो बहुत पुराने दिकिया नूसी, और एक ही प्लेलिस्ट है जो मैं बार बार चलाती रहती हूँ. ये मुझे वहाँ गाड़ी में बैठ कर ख़ुद अपनी प्लेलिस्ट को सुनते हुए एहसास हुआ है. तो इसलिए पहले तो आई एम सो सॉरी, और दूसरी चीज़ ये कि अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं कोई और भी गाने लगाऊँ, क्योंकि मैं हर दफ़ा कोशिश करती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं घूम फिर के हर दफ़ा अपनी कंफर्ट प्लेलिस्ट पे आ जाती हूँ. दैट इज़ द प्रॉब्लम आई गेस. तो जी हाँ, क्योंकि मैं गाने चला रही होती हूँ तो फिर वो मेरी पसंद के गाने होते हैं, और पसंद तो मेरी वैसी ही रहेगी ना जैसी मेरी है. तो मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं बहुत चेंज करके करूँ, लेकिन घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी नाम ही है सफ़र का, और इस सफ़र मुसलसल में आप जितना मर्ज़ी इधर उधर भटक जाओ, एट द एंड ऑफ द डे घर रास्ते का भूला घर को ही आता है, ठीक है. तो वो वाली चीज़ है कि मुझे लगता है मेरी प्लेलिस्ट मेरा घर है, तो इस वजह. खैर, टॉकिंग अबाउट सफ़र, देर इज़ दिस सॉन्ग बयान दैट आई वॉन्टेड टू प्ले आप लोगों के लिए. सुनिए और इन्जॉय कीजिए, एंड लेट्स हेयर इट टुगेदर, बिकॉज ये मेरी प्ले लिस्ट नहीं है तो ऑब्वियसली मैंने भी गाने वाले सुने नहीं हुए. सुनिए, इन्जॉय कीजिए, और जब वापस आएंगे तब और बातें करेंगे हम. जी हाँ.

सनम ओ जिगर तुम कहो क्या ही खबर कैसे कटी ये रातें हैं कहते हैं सब मगर को

0: से.
1: सो आप लोग हैं वापस और हम लोग देख रहे हैं, हम लोग आप लोग सुन रहे हैं पाकिनी एक्सप्रेस और मैं चला रही थी गाना बयान बाय शेर आजम. जब सीरियसली मेरी प्रोनंसिएशन बहुत ही ख़राब चल रही, मतलब पढ़ना तो हमें कभी भी नहीं आता था, पर भी हम प्रटेंड पूरा करते हैं कि हमें बहुत पढ़ने का शौक़ है. मजाक. ओके सो जब मैं पाकिस्तान में थी तो इट हैपन लाइक हमेशा की तरह, ये तो रवायत है कि हमने लिबर्टी बुक स्टोर पर जाना है, दैट इज़ दो लाइक इट गोज़ विदाउट सेइंग. आई वेंट देयर विद माई मॉम, इट वॉज़ द फर्स्ट टाइम. ओ माई गॉड, दैट वॉज अ वेरी वेरी वेरी हैप्पी मेमोरी. आई वेंट देयर, आई सोक इन द बुक्स, दिस इज़ व्हाट आई डू, आई जस्ट लव डूइंग दैट, दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग बहुत सालों से. और जब मैं ये नहीं कर पाती हूँ तो तब मैं मेरे हस्बैंड बायज समथिंग फॉर मी और माई सिस्टर बायज समथिंग फॉर मी. I just love it. I just love people buying Urdu books for me. Or especially if I find what I really want to read. Lekin hua kuch yun is dafa that main Mustansir Hussain Tahir sahab ke safarname padhti hun bahut zyada aur mujhe wo bahut pasand hai, because jaise Japan is 1970s mein kaisa tha hame nahi pata, lekin unko pata hai because wo gaye hue hain. To is tarah ki cheeze mujhe 70s 80s mein, to is tarah ki cheeze jo hain wo mujhe padhna bahut pasand hai aur main ye bahut koshish bhi karti hun ki main padhu. इस दफ़ा जब मैं लेने गई तो मुझे नहीं मिला. मुझे जो सफ़रनामे मिले वो ऑस्ट्रेलिया के थे और इधर उधर के थे, मतलब सम हाउ आई डोंट लाइक इट, आई डिडंट लाइक इट, तो मैंने वो नहीं लिए. लेकिन आदत से मजबूर कुछ तो लेना था. अब आई स्टार्टेड रीडिंग बिकॉज ऑफ मंटो. जब मैं छोटी सी थी तो मैंने मंटो को पढ़ना शुरू किया था. I was sitting ऐसे idle और मैंने सोचा कि क्या करूँ, तो मैं लाइब्रेरी चली गई और लाइब्रेरी में गई तो वहाँ पर सबसे पहले कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक मंटो होता था. आई वॉज लाइक पता तो चले कि मसला क्या है मंटो में. देन आई स्टार्टेड रीडिंग द बुक एंड सम हाउ आई रेड द बुक पार्टीशन से पहले की जो दो स्टोरीज होती हैं, एंड एग्जैक्टली जो मंटो के बारे में कहा जाता था मंटो वैसे ही थे, कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, ही इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल पाकिस्तान के सोसाइटी के हिसाब से. एक टिपिकल आंटी जो हैं, ही विल कैंसिल मंटो फॉर श्योर, क्योंकि उनको लगता है बेटियां ख़राब हो जाएंगी. बट बेटियां ख़राब तब होती हैं जब उनकी अकल नहीं होती है, बेटियाँ ख़राब तब होती हैं जब उनको सिखाया नहीं जाता कि सही और गलत क्या है, बेटियाँ ख़राब तब होती हैं जब वो उनको शऊर नहीं होता, बेटियाँ ख़राब तब होती हैं जब वो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं और उनके पीछे कोई नहीं खड़ा होता, उनको सहारा देने के लिए कोई नहीं खड़ा होता. और अगर उनके दिल में सवाल आते हैं तो आप उनको झटक देते हैं और कहते हैं नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसी बातें बेटियां नहीं करती, तब बेटियां ख़राब होती हैं, वैसे बेटियां ख़राब नहीं होती हैं. और मेरी बेटी नहीं है इसलिए मैं कह सकती हूँ कि बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं, और जिन लोगों की बेटियाँ हैं वो उनको संभाल के रखें और उनको चेरिश करें और उनके साथ हैप्पी मोमेंट्स करें, बिकॉज़ ज़िंदगी चलती रहती है. आप अच्छे मोमेंट्स आपकी लाइफ में आएँ या ना आएँ, ज़िंदगी चलती रहेगी सैडली. और एक टाइम आएगा जब बच्चे आपके साथ वक्त नहीं गुजारना चाहेंगे, तो इसलिए जस्ट मेक गुड यूज़ ऑफ़ योर टाइम, जस्ट स्टे विद देम. ज़्यादा नहीं होता, 15-20 मिनट भी बैठ जाएँ आप तो बच्चों के साथ आए कॉन्टैक्ट करके, तो बच्चों के लिए वो भी एक बहुत बड़ी हैप्पी मेमोरी है. छोटी छोटी चीज़ें हैं, खाना क्या खाना है, कितनी देर में खाना क्या खाना है, कहाँ जाना है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर आप पूछ लेंगे तो आपके बच्चे हैं, आप ही की जैसी चीज़ें करना चाहते हैं, आप ही का जैसे हिंदी में कहते हैं आपका ही अंश है. तो जब आपके जैसे बच्चे हैं तो वही काम करना चाहेंगे जो आप करना चाहते हैं. ऑब्वियसली थोड़े से डिफरेंट होंगे, लेकिन कोशिश करिए कि आप अभी समर्स में टाइम स्पेंड करें बच्चों के साथ थोड़ा बहुत, ताकि उनको फ़ील हो कि वो हर्ड हैं, वो उनको कोई सुनने वाला है, उनके कोई साथ खड़े होने वाला है, दे फील द लव. और हमारे सारी उम्र से वही एक दिक्कियानूसी बात बती चली हुई है कि जी बाप कमा कर ला रहा है तो किसके लिए ला रहा है, बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है ना. आई एग्री, लेकिन वो बताना बहुत ज़रूरी है, वो जताना दिखाना बहुत ज़रूरी, जताना नहीं बट दिखाना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे एक बाप की लाइफ में इतने स्पेशल हैं कि वो उनके लिए रोज़ाना बाहर जाता है, काम करता है और फिर वापस घर आता है. तो या इफ़ यू हैव लव्ड वंस अराउंड यू सिटिंग राइट नाउ, जस्ट टेल देम हाउ इम्पॉर्टेंट दे आर इन योर लाइफ एंड ट्राई टू मेक एवरी मोमेंट काउंट, एंड जस्ट लाइक ट्राई टू सीज द मोमेंट्स दैट यू हैव राइट नाउ विद योर लव्ड वंस एंड ट्राई टू लाइक मेक हैप्पी मेमोरीज, कोर मेमोरीज, एंड जस्ट लाइक इन्जॉय लाइफ. या इसी के साथ हम लोग हसन रहीम का एक और गाना जो है वो चलाने लगे हैं, विच इज़ फीचरिंग तलविंदर ऑल्सो. आई डोंट नो इफ इट इज़ उर्दू और नॉट, बट लेट्स सी. अब तलविंदर इज़ देयर, सो मे बी पंजाबी होएगा, बट लेट्स सी. हियर वी गो.

0: सो हम लोग आ गए हैं वापस और आप लोग सुन रहे थे हसन रहीम के गाना तलविंदर के साथ. दैट्स अ थिंग अबाउट गाना. मेरा सीन ही है कि मुझे गाने पता होते हैं लेकिन क्योंकि मैं सुनती नहीं हूँ ज़्यादा तो मुझे इसलिए पूरा आगे पीछे का नहीं पता होता. मुझे इंस्टाग्राम से इधर उधर जब छोटे छोटे क्लिप्स का पता चल जाता है तो Yeah, it was good. लेकिन हसन रहीम का ये सीन है कि मैंने हसन रहीम के कोई ज़्यादा गाने जो हैं वो सुने नहीं हैं तो मैंने रेडियो के थ्रू इसको डिस्कवर किया था. एंड ही इज़ काइंड सो आई गेट इट कि जब बंदा यंग होता है तो उस टाइम पर बंदा इस तरह के पेपी गाने जो है वो सुनता है और यो है और लड़का भी कूल है तो आई गेट इट गर्ल्स आई गेट इट. सो क्योंकि हर बंदा एक टाइम पर टीनेजर होता है तो आई गेट इट. सो या मूविंग ऑन, हम लोग बात कर रहे थे फुटबॉल के बारे में. फुटबॉल का जो फाइनल था इट वाज या व्हाट शुड आई से, आई वाज सपोर्टिंग स्पेन ऑब्वियसली. और उससे पहले भी जो आई थिंक जो फ्रांस और इंग्लैंड का मैच हुआ था थर्ड पोजीशन के लिए इट वाज लाइक बॉन्कर्स, मतलब लाइक क्या. एंड इसी तरह से जो इंग्लैंड का मैच हुआ था इट वाज आल्सो बॉन्कर्स, मतलब क्या. तो खैर आई एम अ रोनाल्डो फैन एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेड अ वेरी नाइस थिंग. शी वेंट लाइक जो लोग रोनाल्डो को पसंद करते हैं वो एक्चुअली रोनाल्डो को पहले पसंद करते हैं और फुटबॉल को बाद में पसंद करते हैं, और जो लोग फुटबॉल को पहले पसंद करते हैं वो मेसी को पसंद करते हैं. आई रियली रियली लाइक्ड दिस सेइंग. That is true because you go by the aura, you go by the style, you go by the same thousand things that you all the time see around Ronaldo, and there is a big empire kind of aura kind of thing around him. So obviously usko yehi uska wo khud pehle hai aur उसका गेम बाद में है. और मेसी को जब आप एक थोड़ा सा बैठकर वर्ल्ड कप में मेसी को नोटिस करना शुरू करते हो तो ही इज़ अ गेम प्लेयर, ही इज़ लाइक पूरी टीम प्लेयर है, वो टीम को साथ में लेकर चलता है. और आप तब जब आप उसको खेलते हुए देखते हो तो आपको फिर रियलाइज़ होता है कि मतलब ही इज़ एन एस प्लेयर. नॉट दैट आई एम सेइंग रोनाल्डो इज़ नॉट अ बैड गुड प्लेयर, बट स्टिल यू नो देयर इज़ अ डिफरेंस. एंड एंड दैट was felt the moment was very emotional when he left. Obviously aakhri match hota hai, you leave, it is an emotional moment. But then again when you're like only 18-19 year old like Lamine Yamal and you're winning the world cup, wo bhi bahut badi cheez hoti hai. So wo khushi ghami saath saath chalta rehta hai, those happy sad moments, it's the part of the life and this is how life goes on. And kisi ki jeet kisi ki haar hoti hai obviously, to this is how the world rolls. Aur ऐसे ही है. माय किड वाज वेरी वेरी सैड. ही वी सेंड हिम टू स्लीप रोनाल्डो का जब लास्ट मैच हो रहा था, बिकॉज यू कुड टेल. एंड देन ही वोक अप इन द मॉर्निंग एंड ही वाज वेरी सैड एंड ऑल दैट, बट एटलीस्ट ही वाज नॉट ही डिडंट एक्सपीरियंस दोज थिंग्स यू नो, बिकॉज उस टाइम पर एक आप मोमेंट में होते हो, आप रोनाल्डो को रोते हुए देखते हो, फिर आप खुद रोने बैठ जाते हो. दिस थिंग आई डिडंट वॉन्ट फॉर हिम. सो या इसी नोट के साथ, क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा उर्दू पंजाबी गाने चलाती हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले समथिंग उर्दू. आई थॉट कि मैंने कहीं पर ममदानी को सुना. यू एवरीबडी नो ममदानी, हु इज़ ममदानी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. बट ममदानी के बारे में मैंने कहीं पर सुना था दैट ही रियली लाइक अ पाकिस्तानी म्यूज़िशियन, और मैंने फिर सर्च किया एंड ही लाइक्स शमून इस्माइल एंड आई हैव हर्ड ऑफ हिम, बट नॉट इस तरह से कि मुझे उसके गाने याद हैं. तो इसलिए आई थॉट कि चलो हम शमून इस्माइल को थोड़ा सा चला कर देखते हैं, मे बी कुछ मज़े की चीज़ निकल आए. तो पहले हम चलाते हैं एक गाना शमून इस्माइल का, तलहा का एंड आसिम का, जो कि आई थिंक पुराना है बट इट्स देयर ओजी सॉन्ग. सो आई थॉट वहाँ से शुरू करते हैं. ये वही टाइम है जब हानिया भी थी, जिनको पता है उनको पता है. सो हियर वी गो विद दिस सॉन्ग. और ये भी मुझे याद नहीं है बट साथ मिलके सुनते हैं, शायद समझ आ जाए क्या गाना है. इफ़ यू चूज मनी ओवर लव यू विल ऑलवेज बी पुअर. ओके लेट्स सी द सॉन्ग इज अबाउट एंड हियर वी गो. इज दिस पाजी हानिया इन द मूवी? मैं एक्चुअली
1: इंसान प्यार में पड़ जाए ना तो गलत भी सही लगने लगता है. और सही सही तो कुछ रहता ही नहीं है बॉस।

तू दिल कीता चोरी तेरे हाथ विच डोरी तेनू पता ते मैं सॉरी तेनू दस देना फोरी सोचता सी कदी हसते सही पसते सही looking like a fantasy now you sitting next to me

0: सो हम लोग आ गए हैं वापस और गाना ठीक ठाक ही था, लेकिन क्योंकि पुराना है और ओजी है तो आई थॉट के चला देती हूँ। ओ हानिया बाजी हैं एंड पे, ओ ओ ओ शी इज़ देयर। इट इज़ फनी हाउ लाइफ चेंजेस, लाइफ गोज ऑन एंड पे लिखा हुआ है। हाँ जी, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, बट अभी क्योंकि सब लोग मूव ऑन कर चुके हैं तो हम भी मूव ऑन करके सिर्फ शमून इस्माइल के गाने चलाएंगे ताकि हमें समझ आए कि ममदानी भाई को क्या पसंद आ रहा है। तो एक गाना है वॉल्यूम और एक गाना है ऑन एंड ऑन। तो लाइफ गोज ऑन के बाद हम चलाने लगे हैं रंग बाय शमून इस्माइल। और अभी हम लोग बात कर रहे थे फुटबॉल की, और उससे पहले हम बात कर रहे थे अपने जो लव्ड वंस हैं उनको करीब रखने की। आई थिंक वो लोग जो लोग मेरा सेंडिंग जो है वो बहुत देर से सुन रहे हैं, उनको पता होगा कि मैं हर चीज़ से ज़्यादा फोकस करती हूँ ट्रांसपेरेंट रहने में, प्रेजेंट रहने में, अपनी इमोशंस को का इजहार करने में। मेरे लिए लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस काबिल हों कि आप अपनी जो दिल में बात है उसको पूरी तरह से अगले बंदे को कह सकें, मतलब, और आप अपने आप से इतने ट्रू हों कि आपको वो बात कहने से कुछ रोक ना सके। मतलब ये ना हो कि जी आप डर रहे हो कि यार मैंने अगर ये बात कर दी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस तरह की जो सेकंड थॉट्स है ना, अपने बच्चों को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने लव्ड वंस को इस तरह का इंडिपेंडेंट बनाएं कि वो अपने दिल की जो बातें हैं वो दूसरों तक पहुँचा सकें। बिकॉज एक इंसान जो एक्चुअली सोच रहा है और वो दूसरे को नहीं कह रहा, उसका मतलब है कि उसके दिल में कोई ना कोई डर है। डर हो सकता है कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा, डर हो सकता है कि मेरी मम्मा को बुरा लग जाएगा, डर हो सकता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली, डर हो सकता है कि मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या कहेंगे। उसका क्या मतलब है कि आपकी जो जिंदगी की वर्थ है वो आप डिसाइड नहीं कर रहे, वो लोग डिसाइड कर रहे हैं। कौन किसको आपके साथ रहना है वो आपके साथ इसलिए नहीं रह रहा है क्योंकि वो उनको आप लोग पसंद है, वो आपके साथ इसलिए रह रहे हैं बिकॉज आप उनके साथ फेक कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो आपको हैंडल नहीं कर सकते वो वर्दी नहीं है आपके साथ के, ठीक है। मैं बात ये नहीं कह रही कि अगर अपनी अम्मा को जाके कहना है और बुरे तरीके से और सारा कुछ कहने लग जाए, लेकिन आराम सुकून से प्यार से हर चीज़ जो है वो बताई जा सकती है। आपके बॉस को भी कहा जा सकता है कि सर लाइक आई एम सो सॉरी टू से बट दिस इज़ हाउ इट इज़, या सॉरी। तो एक बात करने का तरीका होता है, वो बात करने का तरीका ज़रा सोचिए, उस पर गौर कीजिए। और मुझे पता है कि 100% ये बात जो है वो डूएबल नहीं है, आई नो इट। हम अपनी एवरीडे लाइफ पर 100% इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, बट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश तो कर सकते हैं। मतलब आई एम लाइक कोशिश कर रहे हैं, हम दुनिया में आए ही सिर्फ कोशिश करने के लिए हैं। यहाँ पर कोई भी आपसे होप नहीं कर रहा कि आप बैठ कर 100% अपना लाइफ में अचीव कर लेंगे, नहीं। अगर आप 20% भी कर लें तो बहुत बात है, ठीक है। तो कम से कम 20% अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, ऐसे लोग जिनसे आप थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, कोशिश कीजिए कि उनके साथ ट्रांसपेरेंट रहिए ताकि आपको खुद वो खुद इत्मादी आए और आप खुद अपने आप पे प्राउड फील करना शुरू करें। और आहिस्ता आहिस्ता जब आपको उसकी समझ आ जाएगी कि किस तरह से आगे लेकर चलना होता है तरीका अपनी बातों को अगले बंदे तक पहुंचाने का, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ज़िंदगी जो है और इमोशंस जो है वो लहरों की तरह होते हैं और आप जो है वो अपनी कश्ती पे बैठे हुए हैं। तो आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सी लहर पर अपना सफ़र डालना है। वो लहर जो है वो इस्तराब की हो सकती है और इश्तियाक की भी हो सकती है, और वो लहर जो है वो मोहब्बत की भी हो सकती है और नफ़रत की भी हो सकती है। वो लहर जो है वो इमोशंस हैं लाइक सिर्फ जो हर एक इंसान के अंदर होते हैं। तो कौन सी लहर पर कश्ती लेकर जानी है वो आप डिसाइड करेंगे। इसी नोट के साथ शमून इस्माइल का गाना चलाते हैं रंग। Here we go. I myself don't know.
1: Okay. 10 din da para je tu hele

0: So, Shamoon Ismail, not bad. Yeah, but very burger, I must say. But obviously, मुझे burger लगेगा because मैं पंजाबी गाने सुनने वाली बंदी हूँ. मतलब, come on, Nimra. लेकिन क्या कहूँ मैं? इसके साथ साथ मुझे याद आया, मुझे फरहान सईद का आजकल एक ड्रामा चल रहा है और उसका OST बहुत पसंद है. एंड आई थॉट कि हम वो भी चला सकते हैं और वो भी उर्दू में ही है. नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं ड्रामे देखती नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा. बट मैंने अभी कुछ देर पहले सुना था. ओह, मिल गया. ओह, ड्रामे का नाम है बस तेरा साथ हो, और गाना जो है वो गाया, OST जो है उसका वो गाया है, वो मेरे हमसफ़र भी है. हाँ, या आई डोंट रिमेंबर द सॉन्ग, बट मुझे इसका जो OST है वो अच्छा लगा था. एंड आई थॉट कि मैं चला सकती हूँ आप लोगों के साथ भी, आप लोग भी सुन सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे. तो अब सीन ये है कि हमने गर्मी की बात कर ली, हमने फ़ुटबॉल की बात कर ली, हम पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन कश्मीर में जो हालात हैं वो उनके बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है. आई वुड जस्ट से दैट अल्लाह मियाँ रहम करे भैया हमारे लोग, हम पर, हम सब पर, और अल्लाह मियाँ सम हाउ लोगों को कंटेंटमेंट दे, क्योंकि दुनिया जो है वो आपे से बाहर होती जा रही है. इनको ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए. और मैं अभी पाकिस्तान में जब अपने इधर उधर के रिश्तेदारों से, सब लोगों से बात कर रही थी, तो हालात जो हैं ऑन ग्राउंड, मतलब ऊपर ऊपर से सब सही नज़र आता है, लेकिन आपको सेंस होती है कि कुछ चीज़ें हैं जो ठीक नहीं हैं. वो प्रिटेंस जो है वो अभी भी चल रही है. तो ऊपर से लेपा पोती करके सब अच्छा है, सब अच्छा है, क्या मास्क पढ़ाया चल रहा है, और अंदर अंदर से चीज़ें जो हैं वो दीमक की तरह जो हैं ख़त्म होती जा रही हैं. क्योंकि जब आप लोकल लोगों से बात करते हो तो उनके बारे में आपको ये पता चलता है. अभी पेशावर में मैं थी, तो पेशावर एंड लाहौर में यू कांट एक्चुअली सी अ डिफरेंस बिकॉज इट लुक्स लाइक लाहौर एग्जैक्टली. और बहुत सी चीज़ें हैं जो वहाँ पर डिफरेंट हैं. मतलब खाने का रात को जो है वो उतनी ज़्यादा दुकानें नहीं खुली होती, लेकिन फिर भी दुकानें खुली हुई हैं. और पेशावर के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आई हैव बीन गोइंग टू पेशावर फ्राम लाइक पास्ट 16 years now, and 16 years में मैंने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी हैं जो ऊपर नीचे हुई हैं, अच्छी हुई हैं, बुरी हुई हैं. और अभी जिस स्टेट में मैंने पेशावर को देखा है, इस तरह मैंने पेशावर को कभी भी नहीं देखा है. लेकिन उसके बावजूद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको फ़ील होता है कि यार, मतलब कुछ तो मसला है. और तो आई जस्ट रियली होप कि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं, हालात जो हैं वो लोगों को अकल प्रिवेल करे, और लोग जो हैं वो इंसानों वाले डिसीजंस लें. सो इसी नोट के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि चीज़ें जो हैं वो अच्छे नोट पे चलेंगी, वी आर गोइंग टू प्ले बस तेरा साथ होगा OST. और मुझे अच्छा लगा था तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के लिए भी प्ले करती हूँ, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा. एंड आई थिंक इसके अंदर म्यूज़िक के अलावा और भी वो होगा, बातचीत और डायलॉग्स और थिंग्स लाइक दैट. सो जस्ट लाइक लेट्स सी.
1: मुझे
0: ओके

क्यूट है ना, ना है ना ना, मुझे क्यूट लगा था तो आई थॉट कि आप लोगों को भी सुनना चाहिए बिकॉज आई फाइंड इट वेरी क्यूट. इसी के साथ साथ अभी जो है आसिम अज़हर के बहुत सारे गाने आ रहे थे एंड आसिम अज़हर भी मोस्टली उर्दू गाने गाता है, तो मैंने सोचा कि चलो हम इसको भी चलाते हैं. तो आज मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं ज़रा उर्दू उर्दू चलाने की कोशिश करूँ और वो अपनी पुरानी रैंडम जो मेरी कम्फर्ट प्ले लिस्ट है वो मैं ना चलाऊँ. एंड टू सम एक्सटेंट आई थिंक मैंने अपने आप को थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप लोगों को मेरी पुरानी वही प्लेलिस्ट जो है वो पसंद है तो आप लोग ज़रूर मुझे फीडबैक भेज सकते हैं. और फीडबैक भेजने का तरीका बहुत आसान है जो कि आप लोगों को पता है. आप लोगों को जाना है रेडियो वेबसाइट रेडियो फैब्रिक की वेबसाइट पर. वहाँ पर जाके जब आप प्रोग्राम्स खोलेंगे तो उस प्रोग्राम्स में एन में नहीं पाक इंडिया एक्सप्रेस पी में, पाक इंडिया एक्सप्रेस में आप लोग ढूंढेगा और बिल्कुल पेज के नीचे जो है आप लोग मुझे फीडबैक लिख सकते हैं. जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, अपने प्ले लिस्ट के बारे में, अपने गर्मी के एक्सपीरियंस के बारे में, एनी थिंग यू वॉन्ट टू राइट मी यू कैन जस्ट राइट मी. और मुझे जो आई थिंक पहले फीडबैक मिला था उसके बारे में हमने बात कर ली थी आई थिंक, यस. और अभी जो फीडबैक आएगा उसका आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड. अगर कुछ है तो ज़रूर बताइएगा. आप लोग अगर कुछ प्ले करना चाहते हैं, कोई अगर इंटरव्यू मुझे यहाँ आके मेरे साथ बात करना चाहता है, मेरे साथ शो करना चाहता है, यू आर मोर देन वेलकम. और अगर आप लोगों के पास टॉपिक्स पर बात करनी है तो वो भी आप लोग मुझे भेज सकते हैं टॉपिक्स और मैं उन टॉपिक्स के बारे में बात कर सकती हूँ. दैट्स माई थिंग, आई लाइक टू टॉक अबाउट थिंग्स, लाइक टू टॉक अबाउट टॉपिक्स. ऐसा कोई टॉपिक जो मुझे दिमाग में नहीं रहा और आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में बात करूं पॉलिटिक्स के अलावा, बिकॉज पॉलिटिक्स बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख़राब चल रही है. एक फ़नी इंसिडेंट्स जो मैं पाकिस्तान से आपको बता सकती हूँ वो ये है कि हमारे घर में फंक्शन हो रहा था, लाइक देर वॉज समथिंग हैपनिंग घर पे, तो वी थॉट कि हम डिकोर वगैरह देख लेते हैं अच्छा सा. हमने जब देखा तो हमने ऑनलाइन डिकोर मंगवा लिया, जो हीलियम बलून्स थे उनमें हीलियम भरवानी थी हमने समहाउ गैस वाले पुकाने, ठीक है. अब वो गैस जो है हीलियम वो हम ढूंढने के लिए लूर लूर लूर लूर डिफेंस में घूमते रहे, एक जगह से पूछा, दूसरी जगह से पूछा, दूसरी जगह ने तीसरी जगह पर भेजा. समहाउ जब हम तीसरी जगह जा रहे थे तो दरमियान में हम लोगों को एक जगह नजर आ गई जहाँ पर वो हीलियम बलून्स थे और वो वहाँ पर उसमें गैस भी भर रहे थे. तो जब हम लोग वहाँ पर गए तो एक छोटा सा बच्चा था, लाइक अराउंड 6, 7, 8, 9, 8 ईयर्स का, और वो बच्चा जो है वो उधर हीलियम जो है वो भर रहा था. उससे हमने पूछा कि भाई हीलियम भरोगे, तो ही इज़ लाइक हीलियम है नहीं लेकिन हीलियम बना सकता हूँ मैं. आई फाउंड इट सो कूल दैट ही वाज़ लाइक हीलियम है नहीं बट मैं बना सकता हूँ हीलियम. एंड वी वर लाइक कैसे बनाओगे, तो फिर उसने पीछे हम लोगों को दुकान के दिखाया कि ही हैड अ होल जनरेटर काइंड ऑफ अ मशीन जिसके अंदर वो कोई केमिकल डालता है जिसका केमिकल रिएक्शन होता है और उससे हीलियम प्रोड्यूस होती है और वो हीलियम जो है वो अपने बलून्स के अंदर भर देता है. एंड दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज, दे डोंट हैव हीलियम बट दे कैन मेक हीलियम सो और सम अदर गैस आई डोंट नो या बट आई फेल्ट लाइक यही चीज़ है जो मैं पाकिस्तान जाकर एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, यही चीज़ है जो आप बाहर के मुल्क में रहते हुए बहुत ज़्यादा मिस करते हो घर के बारे में, बिकॉज वी हैव वहाँ पर एक जुगाड़ मेंटालिटी कि भाई ये चीज़ आती नहीं है बट कर लूँगा. यू नो आई हैव बीन रेज्ड इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पर आपको हमें हर चीज़ पर यही लगता है कि गाड़ी चलानी आती नहीं है लेकिन मैं चला लूँगा. यू नो माय ओल्डर ब्रदर ही वेंट टू सऊदी अरेबिया फॉर हिज जॉब एंड ऑल, तो मेरा जो छोटा भाई था वो उस टाइम यंग था बहुत और उसने उस टाइम पर गाड़ी नहीं चलाई हुई थी कभी भी. तो उसको जब गाड़ी चलाने के लिए कहा तो ही वाज लाइक आती नहीं है बट चला लूँगा, और चलाई भी कोई छोटे मोटे रास्ते पर नहीं है, कसूर निकल गए गाड़ी लेकर. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं पाकिस्तान में बंदा जाता है तो इस तरह की चीज़ें आप करते हो और आपको रियलाइज़ होता है कि हु यू एक्चुअली आर, हु वेयर यू एक्चुअली बिलोंग टू. एंड इट्स जस्ट दिस वॉर्म्थ एंड दिस यू नो एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ दैट मेक्स अस पाकिस्तानी इज़ वेरी स्पेशल. यू नो कि कुछ आता नहीं है लेकिन कर लेंगे. तो विद दैट नोट एंड ऑन दैट लाइट नोट आई वुड लाइक टू एंड आज का शो. कैसा लगा वो आप ज़रूर बताइएगा. एंड पर हम चलाने लगे आसिम अज़हर का गाना. गाना जो है वो मैंने भी नहीं सुना हुआ, तू है वही, तू है वही, ओके. सो गाना सुनेंगे. आप लोगों ने अगर पिक्चराइजेशन नहीं देखी है तो आप लोग भी जाकर देखें. आसिम इज़ लुकिंग वेरी वियर्ड उसके अंदर. आप लोगों के क्या ख्याल आते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा. किसी दिन आसिम और हानिया के बारे में बैठ के बात कर सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं तो. वेरी स्पाइसी हो जाएगा टॉपिक लेकिन
लेकिन टॉपिक मज़े का है. दैट्स द थिंग अबाउट लाइफ. आपको अपने अलावा हर एक की लाइफ एक्साइटिंग लगती है. हर एक की मतलब वो क्या कहते हैं, बीवी हमेशा दूसरे की अच्छी लगती है, गॉसिप भी हमेशा दूसरे की करना अच्छा लगता है, अपने बारे में कोई बात करे तो ऐसी की तैसी बंदा फेर देता है. खैर, इसी नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. अपना ख्याल रखिए. हम लोग मिलेंगे अब 2 हफ्ते बाद दोबारा. जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, आप सब लोगों को मेरा दुआ सलाम और प्यार पहुँचे. अस्सलामुअलैकुम सॉल्ज़बर्ग.